0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலா சுஃபலா மலயஜ சீதலா ஷஸ்த

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी ये प्रातःकालीन सभा। इस सभा में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए

0: से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये मातृ वंदना। शब्द रचना है डॉक्टर हरि सिंह गौर की और संगीत से सजाया है डॉक्टर ललित मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। शब्द रचना थी डॉक्टर हरि सिंह गौर की और संगीत डॉक्टर ललित मोहन का। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं जी पारंपरिक रचना।

इस पारंपरिक रचना के बाद आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना। धुन बनाई है शंभू सेन ने।

सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर पांडे की ये रचना। और आई श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व की आवाज में ये भक्ति रचना।

पंडित कुमार गंधर्व की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज सुबह 11 बजे बिंदिया कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845। हमारा एसटीडी कोड है 07582। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 240845 और एसटीडी कोड 07582। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा अनुराधा पौडवाल का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 6:40 पर। सुबह 7 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। कृषि संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रोज की ही तरह सुबह 7:05 पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:20 पर। 7:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता।

सुबह 8:15 का समय होगा लोक संगीत कार्यक्रम का। चित्रपट संगीत आनंद आप ले सकते हैं 8:45 पर। सुबह 9 बजे से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। 10:10 पर सुनिएगा फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। 11:30 पर से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम। शाम 6:30 का समय होगा सदाबहार गीत कार्यक्रम का। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुनिएगा शाम 7:05 पर। 7:20 का समय होगा कार्यक्रम ग्राम सभा का।

7:20 का समय होगा संगीत सरीदा कार्यक्रम का। रात 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे मनचाहे गीत कार्यक्रम। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है अनुराधा पोडवाल का।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था अनुराधा पोडवाल का। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में हम

हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं परिवार फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

परिवार फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। संगीत दिया था सलील चौधरी ने। और आई श्रोताओं, अब सुनते हैं एक्टर फिल्म का ये गीत सुलोचना कदम की आवाज में। अजीज कश्मीरी का लिखा ये गीत है और संगीत इब्राहिम का है।

एक्टर फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे सुलोचना कदम की आवाज में। शब्द रचना थी अजीज कश्मीरी की और संगीत इब्राहिम का। और आइए श्रोता हम सुनते हैं बारिश फिल्म का ये गीत तलत महमूद और मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने।

0: बात चलत है ठुमक ठुमक सही बात चलत है ठुमक ठुमक।
1: बारिश फिल्म के इस नगमे के बाद आइए श्रोता अब सुनते हैं फिल्म बसंत बहार का ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कभी कभी हताश भी हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग कमजोर और कुछ बलवान होते हैं। बलवान वो मनुष्य होता है जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व निरोग हो। वैसे शरीर के बल की अपनी सीमा होती है। यदि किसी मनुष्य का आत्मनिर्बल है तो शरीर स्वस्थ और बलवान होकर भी वो कार्य नहीं कर सकता जो आत्मबल के होने पर उस शरीर से लिया जा सकता है। श्रोताओं, इसलिए मनुष्य को अपने शरीर के बल को बढ़ाने के साथ साथ अपनी आत्मा के बल को भी बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सृष्टि में प्रकृति की अनेकानेक शक्तियां अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार लाभ भी उठाता रहता है। उसके पास भी आत्मा की अकूत शक्ति है, पर कुछ लोग ही उस वैभव का सुनियोजित लाभ ले पाते हैं। वैसे मनुष्य शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल के सीमित दायरे में सिकुड़ा सिमटा रहता है और उसी को सब कुछ मानकर उसके अनुसार ताना बाना बुनता रहता है। श्रोताओं, आत्मबल के अभाव में विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती है। जीवन क्रम देखने में सामान्य भले ही लग रहा हो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसी स्थिति में मनोबल और आत्मबल का अंतर हमें जानना चाहिए। मनोबल इच्छा शक्ति, दृढ़ता, साहस और धैर्य का नाम है। सांसारिक सफलताएं इन्हीं गुणों के आधार पर मिलती हैं और इन्हीं गुणों को यदि हम अपने साथ लेकर चलते हैं तो जीवन में हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

आयुषो तुम्हें कार्यक्रम संबंधी सुनिए। कार्यक्रम संबंधी सूचना में श्रोताओं, आज सुबह 11 बजे बिंदिया कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582, यानी कि 07582। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी पशुशाला है उसमें आप अधिकांशतः सूखा रखें और उसमें एक स्लोप जरूर रखें। स्लोप के बाद आपको हर हफ्ते में उसमें चूना, सूखा चूना डालें और दरारों को बंद कर दें। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, यदि हम किल्ली पशु के शरीर पे है और उधर हम इलाज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट पशु को भी आएगा। तो हमारा क्या है, किल्ली का जो साइकिल होता है

0: है कि इनकी जो प्रजनन होता है वो अपनी पशुशाला की अन्य जगह जो दरारें होती हैं उसमें होता है। तो यदि आप उसमें गोबर में 1 लीटर फिनाइल, 2 लीटर के लगभग गोबर और 3 लीटर के लगभग पानी आप एक बाल्टी में ले लें और सारी दरारों में उसका लेप कर दें। जैसे अपन खलियान नहीं लीपते हैं ना, तो वो दरारें बंद हो जाएंगी तो वहां पर उसका अंडा मर जाएगा। तो एकदम जो ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है किल्लियों की, वो वहां पर हम रोक देंगे। और वहां पर हम ऐसी दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में अपन फिनाइल लेके भी कर सकते हैं कि क्योंकि गाय को तो चाटना नहीं है जमीन में और दरारों में चली जाएगी। अच्छा, दूसरा गाय के लिए, तो उसके लिए एक आइवरमेक्टिन करके इंजेक्शन आता है, कई कंपनियों का है, वो लगवा सकते हैं। तो 3 महीने तक आपके लिए सुरक्षित भी है। और 1 ml पर 50 kg के हिसाब से उसमें आप इंजेक्शन लगवा लें, या फिर मार्केट में एक दवा आती है जो पीठ पर डालने की होती है, उससे चाटने से कोई नुकसान नहीं होता। सींग के पीछे से गर्दन से लेके पूंछ तक एक लाइन बना दीजिए उसमें। तो ऐसी दवा बाजार में आती है, तो वो आप 30 ml ले लेंगे तो एक पशु के लिए ठीक है, और अगर आप 100 ml लेते हैं तो 3-4 पशु को आराम से हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि नजदीकी आप पशु चिकित्सालय में जाके वहां से भी दवा ले सकते हैं। किल्लियों का विशेष ध्यान रखें और हरा चारा, अभी जो नया चारा आ रहा है जमीन में, उसका आप बचाव रखें। आप ये लोभ में चारा ना खिलाएं कि बढ़िया हरा चारा खेत पे मिल गया है, तो एकदम बदलाव ना करें चारे में। अगर बदलना ही है तो धीरे धीरे कट्टी करके भूसे में मिला के दें, तो जो निमोनिया है, गलघोंटू है, ये जो रोग आता है उससे बचाव जरूर हो जाएगा। और वैक्सीनेशन भी आप लोग निश्चित रूप से करा लें। किल्ली यदि हम पशुशाला में उनको मारेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, शरीर पे आने के बाद हम शरीर पे इलाज करेंगे तो इलाज में हमारा पैसा भी ज्यादा लगेगा और पशु भी उतना स्वस्थ नहीं रहता है। तो किल्ली का अपन को उपचार तो निश्चित रूप से करना है। तो पशुशाला ऐसी ना हो जिसमें हमने देखा है गांव में कि कच्चा फर्श रहता है, गड्ढे हो जाते हैं, पानी भरा रहता है। तो अपन को उतार में, ढलान में अपने को पशुशाला रखना है, और अधिकांश समय में वो सूखी होना चाहिए। पशुओं का उपचार करके बाहर निकाल के उसमें इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। कई विधियां हैं किल्ली के उपचार की। इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन, आप इसको लेके 1 ml 50 kg के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, जैसे सामान्य जो वजन है 300 kg का होता है, तो करीब आपका ये 5 से 6 ml तक, आपका 6 और 7 ml आप लगवा दीजिए, तो 3 महीने के लिए फ्री रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ साफ सफाई यदि आप पशुशाला की रखेंगे तो लंबे समय तक निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और आजकल तो किल्ली के लिए बाजार में साबुन भी उपलब्ध है और अच्छी मेडिसिन भी उपलब्ध है, जो केवल उसकी पीठ पे डाल देंगे आप। बहुत सरल है लगाने में भी, पीठ के ऊपर रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन आपको देना है। तो साइपरमेथ्रिन करके एक उसमें दवा आती है और एक आती है अमितराज, दोनों का अपन ऊपर से लेप कर सकते हैं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पशु एक बार किल्ली जब लग जाती है तो बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। आपका पशु आपने सुबह छोड़ा और आपके आसपास खेत पे गया, तो निश्चित रूप से वो पूरा पेट भर के हरा चारा खा के आएगा, और शाम को जब आप भूसा रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चरेगा। तो उसमें क्या होगा, सर्दी जरूर होती है फिर। तो ये रखना है कि चारा आप काट के लाएं और उसकी कुट्टी करके भूसे में मिला के ही दें। दूसरा एक हम पशुपालकों से बताना चाहेंगे कि आप लोग गलघोंटू का जो रोग होता है उसका वैक्सीनेशन निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके आप कहिए, तो वो वहां से लगा देंगे, तो फिर आपका ये निमोनिया से बचाव जरूर हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत कार्यक्रम, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7:10 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: Nas sansani. Nautejna. Nashor din ra. Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में 2000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये स्कीम अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि तथा पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा,
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। वैज्ञानिकों की मेधा, बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर, दुबई समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गत 2 वर्ष में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उद्यान के गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुख्यमंत्री निवास से गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुना जिले के कुंभराज धनिया को शीघ्र ही GI टैग प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। इससे कृषि कार्य को और किसान और आसान बनाने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं।

0: हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त के रूप में 1,500 रुपए प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रुपए से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपए की संयुक्त राशि सीधे DBT के माध्यम से पहुंचेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवा विकसित भारत की आधारशिला है। उन्हें स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाना समय की मांग है। युवाओं को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप सजग और जागरूक बनाएं। राज्यपाल कल लोकभवन में शांतिपनी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन मूल्यों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि शांतिपनी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के 2 मैचों से सिर्फ 1 अंतर है। उधर इंग्लैंड पूल ए में अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में जगह बना चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अध्यक्षता बबीता चौहान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने कल हुई जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में जिले के विकसित वैध और अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कल हुई जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं सतना में जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने 107 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं नूरी फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी।

नूरी फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। जानिसार अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था खय्याम ने। और आई श्रोता हूँ, आप सुनते हैं फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उनके परिवार के सभी लोग। पाकुड़ झारखंड से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और उनके परिवार के सभी लोग। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और उनके परिवार के सभी लोग। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शीतल, रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता और उनके परिवार के सभी लोग। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और उनके परिवार के सभी लोग। मजनू का टिल्ला से इस गीत की फरमाइश आई है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। तो आइए सुनते हैं।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
6: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
5: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
6: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
5: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरवान फिल्म का ये नगमा अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए है आनंद मिलिंद ने, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं यमतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, उनके परिवार के सभी लोग, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर और उनके परिवार के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोलाना और उनके परिवार के सभी लोग, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन।

सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेमांश कुमार चंदन। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर की गाय फिल्म कुर्बान के इस नगमे के साथ ही मनचाहे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतरण के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में, और आई श्रोता हम अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में प्रेम बर्बाटोनी का ये कलाम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इसके साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजा चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार।

0: विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद

0: उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी

0: दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बटन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया के गाया ये झूला लोकगीत।

0: मेडिकल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए श्रोताओं, इस अंतराल के बाद सुनते हैं उर्मिला पांडे की आवाज में ये झूला लोकगीत।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आई श्रोता, अब सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में ये लोकगीत।

अरविंद सोनी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये बसंत लोकगीत। इस कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनने से पहले श्रोताओं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज दोपहर 1 बजे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी, तो श्रोताओं इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी सहभागिता आप दर्ज करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582।

समय होगा सुबह 11 बजे। हमारा फ़ोन नंबर है 240845 और हमारा STD कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे रेखा और अंजना गुप्ता की आवाज़ों में ये झूला लोकगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है

श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज सुबह 11 बजे बिंदिया कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, यानी कि हमें आप फोन कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582। इसी तारतम्य में एक और कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज दोपहर 1 बजे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। श्रोताओं इस कार्यक्रम में फोन कर आप अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, यानी हमें फोन लगा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई।

इसके साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम मिले का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले फिल्म का ये नगमा जावेद अली और साथियों की आवाजों में। और आई श्रोताओं, सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका चित्रपट संगीत में, और आयुष होता हूँ। अब सुनते हैं फिल्म अनजाना अनजानी का ये नगमा, मोहित चौहान, शेखर और श्रुति पाठक की आवाज़ों में। शब्द रचना है कुमार विशाल ददलानी की।

मोहित चौहान, शेखर और श्रुति पाठक और साथियों के गाए इस फिल्म अनजाना अनजानी के इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुबह के 9 बजने को है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत राकिब अलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेगुराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने इजाद किया था, इसीलिए इसे डेगुराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी, उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं, जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी, और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो, चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज़्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुँह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें, ढेरों यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हज़ारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, आकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

0: त्रिलोक, और बात हो रही विश्व फोटोग्राफी दिवस की, तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर। ये आप सोचिए, तब तक ये गीत भी सुन लीजिए।
1: चक लचक मचक चाल चलत जा,
2: ए छोरा गांडा थइया।

0: सत्यमेव जयते टू का ये गीत आपने सुना, जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
3: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
4: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

खयाम। फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है, एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से

18 फरवरी 1927 को नवा शहर पंजाब में मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदन लाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खयाम कुंदन लाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खयाम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जलंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवा शहर से जलंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलां। यहां ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खयाम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खयाम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जलंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहां उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खयाम को हुस्न लाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहां खयाम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्न लाल और भगत राम खयाम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खयाम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था

सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का। इसलिए खयाम

0: पहुंचता नहीं था, इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहां एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तिला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था।
1: अब

फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदन लाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया। वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक बीआर चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्न लाल भगतराम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए। शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खयाम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है सन 1948 में आया बीवी फिल्म का, मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

इस दौर में खयाम ने प्यार की बातें, बीवी और पर्दा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। समय बीतता चला जा रहा था। आखिरकार सन 1952 आया जब जिया सरहदी ने उन्हें फिल्म फुटपाथ के लिए साइन किया। मजरू सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और चंदूलाल शाह जैसे लोगों ने जोर दिया कि इस फिल्म का संगीत उन्हें शर्मा जी के नाम से नहीं देना चाहिए बल्कि अपना असली नाम रखना चाहिए, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खयाम ने खयाम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खयाम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खयाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था।

कामयाबी का पहला स्वाद था। खय्याम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खय्याम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खय्याम की खूब ख्याति हुई।

सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खयाम साहब की शरीक हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए।

0: सन 1966 आखिरी खत, भूपिंदर सिंह का गाया ये गाना जो इस फिल्म का सबसे कम चर्चित गाना रहा।
1: जवान

दिक्कत ये थी कि खय्याम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खय्याम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खय्याम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976, यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खय्याम को साइन किया। कभी कभी खय्याम के करियर का एक माइलस्टोन।

कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना।

0: Kuchi dum dum.
1: सागर सरहदी की फिल्म बाजार में खयाम ने जैसे अपनी रूह को निचोड़ दिया था,

मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खय्याम को चुना गया। खय्याम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया।

फिल्म उमराव जान के लिए खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खय्याम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खय्याम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी कब्बन मिर्जा, और आया

फी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो लेकिन क्वालिटी में हय्याम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई चंबल

धीरे धीरे फिल्म संगीत से खयाम की दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में संगीत दिया, टाइटल सॉन्ग्स तैयार किए और वो भी कमाल के थे। आज के फनकार कार्यक्रम में खयाम की बात करें और उनके गैर फिल्मी एल्बम्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मीना कुमारी के अशार कंपोज किए, एल्बम था आई राइट आई रिसाइट।

चाहे मुकेश हूं, आशा भोसले या मोहम्मद रफी, खयाम ने सभी के लिए गैर फिल्मी एल्बम तैयार किए। जब मोहम्मद रफी गाते हैं पांव पड़ूं तो रिश्याम, तो यूं लगता है जैसे वो पूरे समर्पण के साथ अपनी रूह को अपनी आवाज में उतारे दे रहे हैं।

फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने खय्याम को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आधे घंटे के इस वक्त में खय्याम

एक गाने हर एक फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन खयाम की विदाई फिल्म संगीत से मेलेडी की, ईमानदारी की, उसूलों की विदाई है, नाजुकी की विदाई है।

0: गीत था। संगीतकार खय्याम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, शोत आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीआरपी लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों तथा करगिल शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बदलते दौर का मध्य प्रदेश भिंड जिले की विकास गाथा का वितरण किया गया, जिसमें विगत 2.5 वर्षों में जिले की उपलब्धियों का वर्णन है। मुख्य अतिथि ने सभी परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया और हर्ष तथा शांति के प्रतीक रंगीन गुब्बारे छोड़े। मुख्य अतिथि ने बताया कि जिले में वर्तमान में 23 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं, जो एयर कंडीशन्ड, स्मार्ट क्लासरूम, संगीत और कंप्यूटर प्रशिक्षण से लैस हैं। कनावर, गोहा, दटी, लहार में 145.59 करोड़ रुपए की लागत से सब सुविधायुक्त सांदीपनी विद्यालय तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माय भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भिंड जिले के युवा कलाकार और आरावर्ती संस्कृति संगम के उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विजेता के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक जागरूकता के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इस उपलब्धि के फलस्वरूप उन्हें 15 अगस्त को लाल किला नई दिल्ली में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये सम्मान भिंड जिले और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर माय भारत केंद्र ने कहा है कि भूपेंद्र चौहान की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी उपलब्धि ये दर्शाती है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ माय भारत द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माय भारत केंद्र भिंड ने जिले के सभी युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में माय भारत पोर्टल पर पंजीयन कर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, स्वयंसेवी गतिविधियों, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास अभियानों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े आयोजनों में सक्रिय सहभागिता करें। भिंड जिले में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की समृद्धि और मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अनुसार इस साल भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन नवल किशोर

किशोर पातीराम शिवहरे नर्सिंग कॉलेज भिंड में किया गया। प्रतियोगिता के लिए टीम चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मूल्यांकन के बाद प्रथम 6 टीमों का चयन किया गया। इन 6 टीमों के साथ ऑडियो वीडियो राउंड के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता की गई, जिनमें प्रथम स्थान सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 भिंड, द्वितीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोड़ा, तीसरा स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहा, चतुर्थ स्थान सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव और पांचवा स्थान द इंडियन पब्लिक स्कूल दबोह, छठवां स्थान सिटी सेंटर पब्लिक स्कूल भिंड ने प्राप्त किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ वीर सिंह चौहान ने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में विद्यार्थियों को अवश्य सहभागिता करनी चाहिए, जिससे जीवन जीने की कलाएं प्राप्त होती है और भविष्य में परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। भिंड कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियां, सामने आई समस्याओं, ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं और आगे की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से पंचायतों में किए गए जनसंवाद के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी ली। अधिकारियों को जनसंवाद के निष्पक्ष और प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष रूप से कहा कि जनसंवाद केवल योजनाओं का नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक परिवर्तन लाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पंचायत में यह देखना अनिवार्य है कि क्या लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर और सही ढंग से मिल रहा है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जन संवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: श्रोताओं, अभिनंदन कर रहा हूं आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और इस कार्यक्रम में आप तो जानते हैं हम लगातार बात कर रहे हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर, आज जो हम विषय लेना चाहते हैं वह भी श्रोताओं के द्वारा दिया हुआ है, यूरिक एसिड को लेकर लोग बड़े परेशान हैं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप जांच कराते हो, हेल्थ चेकअप कराते हो, तो दो तीन जांचें आपकी बड़ी आती हैं, उसमें से एक जांच होती है यूरिक एसिड। कभी कभार TSH, कभी कभार शुगर बढ़ा हुआ आता है, और कभी कभार आप विटामिन B12 कम आता है। तो ये प्रायः जांचें ऐसी हैं कि जिससे जनता परेशान हो जाती है। तो यूरिक एसिड जो है ये आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भाग है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब कंसंट्रेशन खून में बढ़ेगा तो ये जॉइंट्स में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो आपको एक बीमारी होती है गाउट, जहाँ पे आपका पैरों की अंगूठा सूज जाता है प्रायः, उसको हम कहते हैं पोडाग्रा, एकदम लाल कुप्पा हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति होती है तो ये अपने आप ही बताती है कि ये तो यूरिक एसिड, देखो भैया ये यूरिक हाइपर यूरिसीमिया है।
0: जी जी।
1: तो गाउट की अवस्था में कभी कभार यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो गुर्दे में स्टोन बन जाता है। डॉक्टर जांच करके पता करता है कि यूरिक एसिड का स्टोन है, या यूरिक एसिड की मात्रा खून में हजारों में हो जाती है और किडनी फेलियर है। यूरिक एसिड की मात्रा हजारों में हो जाए तो रीनल शटडाउन ना हो, ये तीन मुख्य कारण है जिसके कारण हम यूरिक एसिड का इलाज करते हैं। गाउट हो, यूरिक एसिड के स्टोन्स हो, या यूरिक एसिड हजारों में हो, पर प्रायः ये दो या तीन पॉइंट बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड रहता है उसका कट ऑफ 4 है, आपका 6 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है। तो ये केवल एक ही चीज इंगित करता है कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित, चयापचय से संबंधित रोग, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, लकवा, ये आपके जीवन में आने वाला है।
0: सर, यूरिक एसिड जब शुरू होता है बनना या अतिरिक्त मात्रा में बनने लगता है तो उसके संकेत हम कैसे जाने?
1: देखिए, उसमें संकेत देखने की आवश्यकता नहीं है, हेल्थ चेकअप के हम सभी शौकीन हैं तो पता तो चल ही जाता है। तो वो एक अनावश्यक जांच है, पर हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो यूरिक एसिड जब दो तीन पॉइंट बढ़ा हुआ है तो दौड़ना चालू कर दीजिए, भागना चालू करिए, एक एक दो दो रोटी के खाने में आइए, वजन नियंत्रित करें, शुगर है तो शुगर नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, हृदय रोग है तो डॉक्टर

0: मिलकर हृदय रोग का इलाज कराएं। यूरिक एसिड का इलाज कुछ मैंने विशेष परिस्थितियां बताई, उसके अलावा कभी करने की आवश्यकता ही नहीं होती।
1: अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नजरअंदाज करता है इस चीज को तो कितने घातक परिणाम हो सकते हैं?
0: देखिए, दो तीन पॉइंट यूरिक एसिड बढ़ने की बात को नजरअंदाज करने से जगह मैं तो कहूंगा कि आपको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। संज्ञान में लेने से फिर क्या होता है कि आप हर प्रकार के जोड़ों के दर्द या किसी को आपके डॉक्टर भी बोलने लगते हैं कि यूरिक एसिड के कारण है, और जांच में भी बड़ा हुआ आ जाता है, देखो मैंने बताया तो, और दवा लोग खाते रहते हैं। यूरिक एसिड कम करने की दवा से हृदय रोग और हृदय की धड़कन भी ऊपर नीचे होते हुए देखी गई है। तो जिसको जरूरत है वो जरूर ले यूरिक एसिड की दवा, पर प्रायः 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है और वो जबरदस्ती यूरिक एसिड कम करने की दवा खा रहे हैं।
1: तो ये परिस्थिति भी नुकसानदेह है ना सर,
0: क्योंकि दवा के बारे में तो आया ही है। जो दवा है वो ये उसने दिखाया है कि वो हृदय की धड़कन बढ़ाती है, हृदय से संबंधित परेशानियां भी बढ़ा सकती है, तो क्यों अनावश्यक दवा लेना?
1: यूरिक एसिड दिखाना है या बड़ा हुआ आ रहा है तो सही डॉक्टर कौन है?
0: देखिए, यूरिक एसिड का संबंध अगर जोड़ों से संबंधित हो रहा है, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं और यूरिक एसिड काफी बड़ा हुआ आ रहा है और आपको पोडाग्रा जो मैंने बताया ना, जॉइंट एकदम सूज के कुप्पा हो गया है, तब तो आप पहले तो दर्द की दवा देंगे, आराम हो जाने के बाद यूरिक एसिड दोबारा देखेंगे, पहली बार में तो फिर भी दवा नहीं लिखेंगे। लगातार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और ये पोडाग्रा हो रहा है, तब तो चालू करना चाहिए इलाज। आज इनको किडनी में स्टोन है और वो यूरिक एसिड वाला स्टोन है तो जरूर इलाज चालू करना चाहिए। या किडनी फेलियर है, ये यूरिक एसिड हजारों में है और आपको लगता है कि किडनी भूल जाएगी, तब जरूर यूरिक एसिड कम करने का इलाज करना चाहिए। बाकी परिस्थितियों में दवा की आवश्यकता नहीं
1: है। नहीं है मित्रों, हम आपसे इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब भी आपको कोई बीमारी हो तो आप उस बीमारी के विशेषज्ञ से जाके मिलिए, तो आपको सही, सटीक और पर्याप्त इलाज मिलेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, इस तरह की बातचीत हम लगातार करते रहेंगे, आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। हमारा नंबर है 8878112343, नंबर फिर सुन लीजिए 8878112343। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। मिलते हैं अगले बुधवार, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओ, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: नमस्कार सर, कोयला से मुल्ले केसरी यादव।
0: केसरी जी, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप कोयला में?
1: कोयला में सर जल निगम में है, पानी पिया रहे हैं पूरे गांव को।
0: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ अपने पुण्य के काम भी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारा देश अभी अभी हमने अपनी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश में अनुशासन बनाए रखें, हम अपने आप में अनुशासन बनाएं, अपने परिवार में, अपने समूह में, तो हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर तत्पर रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। क्या कहना है आपका?
1: यही है कहना है आपका हमारा कि आगे बढ़े।
0: हाँ, क्योंकि अनुशासन कई चीजों में हमें आगे बढ़ने पर साधना के रूप में काम करता है, और निरंतर विकास के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन हर चीज में होना चाहिए।
1: जी सर जी।
0: तो बता दें, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: देशभक्ति का गाना सुनवा दूं सर?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, और आइए हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो।
5: हेलो
4: जी, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
5: नमस्कार सर।
4: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: कमलेश आदिवासी बोल रहे, हरिनगर भगुमा छतरपुर जिला।
4: कमलेश भाई, क्या करते हैं आप वहाँ पे?
5: हम खेती किसानी का काम करते हैं सर।
4: तो अभी बारिश कैसी है?
5: बारिश तो अभी बादल छाए हैं सर।
4: पानी की और चाहत है फसलों को भी, आपको भी और आपके गांव वालों को भी।
5: हाँ जी, हाँ जी।
4: अच्छा, हमने अपने देश की स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है, ऐसे में अगर हमारे देश के सभी लोग अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन से आगे बढ़ेंगे, तो न सिर्फ वो आगे बढ़ेंगे बल्कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्या कहना है आपका?
5: अनुशासन, अच्छे काम करना चाहिए सर, अनुशासन में रहना जरूरी है सर।
4: हम किसी दूसरे को परेशान ना करें, अपने जो अधिकार हैं उनको पहचाने और अपने जो कर्तव्य हैं उनको भी जाने, यही अनुशासन होता है।
5: हाँ जी।
4: तो बताएं कमलेश जी, कौन सा गाना सुनवाए हम आपको?
5: अमृत फिल्म का।
4: अमृत का कौन सा?
5: राधा के बिन श्याम अधूरा, सीता के बिन राम अधूरा,
4: और नहीं कुछ तुमसे कहना।
5: हाँ जी।
4: तो आइए सुनते हैं कमलेश जी, आपकी फरमाइश पर फिल्म अमृत का ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक।

0: का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: हेलो सर, नमस्ते।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करेंगे सुने में।
2: जी सर, चित्तर सिंह लोधी, ग्राम महका मड़वासा, नगर परिषद सुरखी।
3: चित्तर भाई, हम सब ने मिलकर अभी अपनी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है, ऐसे में हमारे देश को और विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अनुशासन में रहें। तो अनुशासन के बारे में क्या कहना है आपका?
2: अब अनुशासन के बारे में सर क्या है, हम तो है कृषक और 65 साल की मेरी उम्र हो गई।
3: जी,
2: नियम कायदे की हम बात मानते हैं, जैसे कोई चीज को रोक दिया
3: हाँ।
2: या 3 महीना बाद या 4 महीना बाद, तो अपन को पालन करना चाहिए।
3: सही बात है चित्र भाई, किसान हो, एक सामान्य नागरिक हो, एक श्रमिक हो, सबके लिए, अपने देश के विकास के लिए अनुशासन में रहना जरूरी है।
2: बिल्कुल जरूरी है सर,
3: हम उन नियमों का, उन कायदों का पालन करें जो हमारे देश ने अपने विकास के लिए निर्धारित कर रखे हैं।
2: जी सर, हम
3: कोई भी ऐसा काम करने से बचें जिससे हमारे देश की छवि खराब होती हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर।
3: तो बताएं चित्र भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: सावन को आने दो।
3: सावन को आने दो,
2: जी
3: बहुत ही अच्छी बात है। सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म सावन को आने दो, इसका ये गीत।

0: हेलो नमस्कार सर।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: जी हम बलराम अहिरवार ग्राम बीकुर कला से बोल रहे हैं।
1: तो क्या करते हैं आप बीकुर कला में बलराम भाई?
0: सर यही खेती बाड़ी का काम करते रहते हैं किसान।
1: अच्छा अच्छा, तो पानी के क्या हालचाल है आपके यहाँ?
0: पानी तो सर फिलहाल पिछले बार की से कम गिर रहा है अभी।
1: हाँ बलराम भाई, हम बताना चाहेंगे कि हमारा देश अभी अभी हमारे देश में स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई जा रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों का भी पालन करें, जैसे कि हम अनुशासन में रहें, नियम कायदों का पालन करें, जो भी नीति निर्धारकों ने जो हमारे लिए मापदंड तय किए हैं एक सामान्य नागरिक के लिए, उनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। आप करते हैं क्या ऐसा काम?
0: जी सर, देश में अपना जो भी सहयोग है वो उसका पूरा पालन करें।
1: हाँ हाँ,
0: और
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो बता देंगे गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: कर्मा फिल्म का सुनवा देना, माहिले ना जाइयो परदेश।
1: बलराम जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: जी मैं अम्बेडकर चौक टैगोरबाद खुरई से सौरभ बात कर रहा हूँ।
1: तो सौरभ क्या कर रहे हैं आप खुरई में?
0: अभी सर हम वो करते हैं, प्राइवेट साइट वर्क करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, सौरभ हमें ये बताएं कि देश की तरक्की में हमारा अनुशासन में रहना कितना जरूरी है?
0: देश की तरक्की में सर हर प्रति व्यक्ति का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से ही देश बनता है।
1: हाँ।
0: यदि हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें,
1: बिल्कुल,
0: तो पूरे देश को सुधारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी सर।
1: सही कहा। आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं अपने देश की तरक्की में अनुशासन में रह के?
0: हम जो कर्तव्य मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी से और तरीके से काम करके, जो होना चाहिए लॉ और नियम के हिसाब से, वैसे ही करके ही देश की तरक्की में कर सकते हैं सहायता।
1: बहुत ही बढ़िया। सौरभ जी बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: गाना आप सुना दो, पीके फिल्म का दिल तरबदर, अंकित तिवारी की आवाज में।
1: हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म पीके का ये गीत।

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका।
0: जी आकाशवाणी सागर से बोल रहे
1: हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी हम ग्राम परवीर से बोल रहा सर, नन्नी डोरी के पास।
1: स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं।
0: हमारा नाम गोपाल सैलू जी, हम किसान भी चलते हैं और किराने की दुकान करे हैं।
1: हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश ने, हमने, हम सब ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने देश के विकास में, देश की तरक्की में अपना योगदान जरूर दें। आप किसान हैं तो आप अनुशासन में रह के ईमानदारी के साथ किसानी करें और कुछ भी ऐसे कामों से बचें जो किसी दूसरे की सेहत पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक काम और हो सकता है कि आप जैविक कृषि की तरफ जाएं, जो बहुत ही फायदेमंद होती है, साथ ही स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। क्या कहना है आपका?
0: जी यही सर हमारा कहना है कि आप इसमें देश की सेवा करें सब और अपने वो से चलें, साफ सफाई ने हर चीज को सब योगदान करें, हर काम में सहयोग करें सब लोग जो कुछ है अपना।
1: बताएं गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
0: अब सर देशभक्ति गीत सुनवा दिए।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में। अपना नाम बताएं।
1: मंगल गंधर्व।
0: क्या हालचाल है मंगल जी?
1: बढ़िया है सर।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जिला सागर, ग्राम लिधौरा से।
0: लिधौरा, अभी हम लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम अपने देश के लिए सभी लोग मिलकर अनुशासन में रहें, नियम कायदों से चलें और देश के हित के लिए जो भी हो सकता है वो सब करें।
1: जी जी।
0: आप क्या करते हैं?
1: सर हम सर क्योंकि झंडा लहराते हैं सर स्कूल में, जो सभी लोग झंडा लहराते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस को जैसी स्वतंत्रता उन्हें चाहिए हम लोग सर वैसे ही मनाते हैं।
0: हाँ, और साथ में सही मायने में ये तब सार्थक होगी जब हम अपने सारे काम, चाहे वो हमारे यहाँ की सफाई हो, स्वच्छता हो, चाहे हमारे ट्रैफिक हो,
1: आसपास साफ सफाई रखें, जो
0: हर चीज में, हाँ ऐसे काम करके ही हम अपने देश की छवि को भी और रोशन कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो बताएं मंगल, कौन सा गाना सुनवाए हम आपको?
1: सर हमको गाना सुनना है सर, वो फिल्म का नाम तो पता नहीं, लेकिन सर वो वंदना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म अंकुश का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे देवेश पांडे, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे बिंदिया कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582। सूचना एक बार पुनः सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे बिंदिया कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन कर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, यानी हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
0: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
0: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
0: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
2: जी।
0: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द

0: से निकला है
1: जी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी
1: जी,
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया
1: जी।
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोता, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे
1: जी।
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे
1: जी।
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया
1: जी।
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है
1: जी। तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं
1: जी।
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ

0: ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
1: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
0: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे, अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगे।
0: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
1: एक

0: इनकी बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
1: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
2: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ।
1: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
4: मिसेस केलर
2: जी,
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: ma tum cha pia no
1: Helen Helen शाबाश Helen मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस
2: सलीमन हां मिसेस केलर हां
1: बोल सकती है

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गई।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।